0: आवाज सामाजिक व सांस्कृतिक माहिती देणारे आपले रेडिओ स्टेशन ऐकत रहा 107.8 FM। आनंदी रहा आणि आनंद लुटा।
1: खुशियों की फुहार लाएगी हर दिन त्योहार, अब हर दिन बजेंगे मन में ढोल, अपने मन के रंग में अब रोज रंगेंगे, उड़ान भरेंगे सपनों के रॉकेट में, सिर्फ पुनेरी आवाज में 107.8। खुश रहो, खुशियाँ बांटो।

0: जिंदगी आसान बनाने के लिए आइए सुनते हैं शिवानी बहन के श्रेष्ठ विचार।
1: एक वाक्य ने मेरे थॉट्स को डिस्टर्ब किया, फीलिंग्स को डिस्टर्ब किया, मेरे शब्द डिस्टर्ब हुए, मैंने शायद वो चीजें बोल दी आपने जो बोलनी नहीं चाहिए थी, फिर आपका बिहेवियर डिस्टर्ब्ड हुआ, फिर रिलेशनशिप एनर्जी एक्सचेंज डिस्टर्ब हुआ एक घंटे के लिए। लेकिन मुझे अपने आप को ये चेक करना है कि ये जो मैं सोच रही हूँ, इज इट कम्फर्टेबल फॉर मी। एक चीज हमने मिस आउट की कि ये सारे थॉट्स एंड फीलिंग्स जो हमने क्रिएट की उसका इफेक्ट हमारे शरीर पे भी पड़ा। वेन वी हैव अंडरस्टूड कि एवरी थॉट दैट वी क्रिएट, जस्ट दी अदर डे एक डॉक्टर ने हमें एक्सप्लेन किया, एक साइकाट्रिस्ट है, तो उन्होंने कहा ब्रेन के अंदर 10,000 crore सेल्स है, जस्ट द ब्रेन, ओके, 10,000 crore सेल्स। एंड फिर उन्होंने कहा ये 10,000 crore सेल्स आर, ईच सेल इज कनेक्टेड टू एटलीस्ट 10,000 मोर सेल्स इन द बॉडी, 10,000 crore सेल्स इन द ब्रेन इंटू 10,000, दिस इज द ह्यूमन नेटवर्क, सो मेनी स्विचेस कनेक्टेड टू सो मेनी स्विचेस। अब जब इतने स्विचेस से कनेक्टेड होते हैं तो एक में भी अगर कुछ ऊपर नीचे होगा तो उसका इफेक्ट कितना लंबा जाएगा। तो जब ब्रेन में 10,000 crore सेल्स कनेक्टेड टू 10,000 सेल्स, ईच सेल कनेक्टेड टू 10,000 सेल्स इन द बॉडी, एंड हर थॉट जो हम क्रिएट कर रहे हैं उसका ब्रेन पर असर पड़ रहा है, ब्रेन से फिर वो केमिकल सिक्रेट होते हैं, फिर उसका असर शरीर पे पड़ता है, और हमने कितनी आराम से एक घंटा डिस्टर्ब रहे। अब हम अगर इस इक्वेशन को सिर्फ चेक करें तो एक घंटे में कितना इम्पैक्ट आया होगा हमारे शरीर के ऊपर, उससे हमें याद नहीं रहता ना, क्योंकि हमें शायद नॉलेज नहीं है, अवेयर नहीं है, या हम अपने आप को अलाउ करते हैं वैसे करना।
0: आप सुन रहे हैं पुणेरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो।

शिवाजी की तलवार है, लावणी बेमिसाल है, टेक्नोलॉजी के साथ संस्कार है। मराठी करती स्वागत हर भाषा का, यहाँ भूमि अपनाती हर त्योहार है। सुनिए पुनेरी आवाज 107.8, खुश रहो, खुशियाँ बांटो।

0: टेंशन को दूर भगाने के लिए आइए सुनते हैं सिस्टर शिवानी के अनमोल कथन।
1: किसी का एट लाइन नाउ इवन अगर कल बीत गया इट डजेंट मैटर, आज भी तो कोई ना कोई कुछ लाइन बोलेगा, आज भी तो लाइन आएंगी, आज भी तो बातें आएंगी। तो जब ऐसी कोई बात होती है इवन अगर हमें उस टाइम याद नहीं रहता, हम उस पे रिफ्लेक्ट करके नेक्स्ट टाइम के लिए चेंज करते हैं अपने आप को।
0: आप सुन रहे हैं पुनेरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो।

महडगाव अति महसूर वरद विनायकाच तिथ एक मंदिर मंदिर लय साध सुद जस कौलारू घर घुमटाचा कळस सोनेरी नक्षी नागा

साथ है। हूँ बुझा दीप लेकिन चमकता सदा, राह में भालू की घाम भी साथ है।

साथ है, मैं अकेला नहीं राम भी साथ है, हर घड़ी राम का नाम भी साथ है।

0: के लिए आइए सुनते हैं सिस्टर शिवानी के अनमोल कथन।
1: डिप्रेशन इज एंगर टर्न्ड इनवर्ड्स। जब आप औरों पे नहीं गुस्सा करते तो आप अपने पर ही करने लग जाते हैं, लेकिन शायद जब आप औरों पे भी गुस्सा करते हैं तब भी अपने पर गुस्सा कर रहे हैं। आपको गुस्सा देने के लिए वो मेरे से होते हुए ही गुजरेगा, वो एनर्जी पहले यहाँ क्रिएट करनी पड़ेगी। इट्स नॉट पॉसिबल कि मैं आपको कुछ भी दे दूं विदाउट क्रिएटिंग इट। पहले मुझे कूट कूट के गुस्सा अपने अंदर क्रिएट करनी पड़ेगी कि मुझे अपने आप को क्या देना है। नहीं, मुझे तो इसे गुस्सा करना ही है। कीजिए, बट ओनली रिमेम्बर द एनर्जी दैट एंगर आई क्रिएट देन आई गिव।
0: आप सुन रहे हैं पुनेरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो।

आइए आइए, दरवाजे पे क्यों खड़े हैं? अंदर आइए। ये घर है मुस्कुराहट का, यहाँ बसती है खुशियाँ। ये है पुनेरी आवाज 107.8। खुश रहो, खुशियाँ बांटो।

0: ओम शांति अवेकनिंग विद ब्रह्मा कुमारीज में आज फिर आप सबका स्वागत। जब खुशी की हम बात करते हैं तो ऐसे लगता है कि खुशी शायद होठों तक सीमित है, चाहे शायद मेरी हंसी तक सीमित है, चाहे मैं जब बच्चों के साथ होता हूं तो जो खिलखिलाहट होती है वहीं तक सीमित है, लेकिन वो हंसी है, खिलखिलाहट है। खुशी मेरे अंदर की बात है, मेरे अंदर की वो फीलिंग है जो मैं खुद क्रिएट कर पाता हूं। अभी तक ये बात नहीं समझ में आ रही थी, क्योंकि लगता था कि यही सब बातें जो बाहरी रीति से हो रही हैं, बाहर हो रही हैं, उसी पर खुशी निर्भर करती है, और निर्भरता बहुत ज्यादा थी। लेकिन इस श्रृंखला में जहां हम बातें करने लगे हैं, वहां ये बात समझ में आती है कि ये मेरी अपनी क्वालिटी भी है और मेरी अपनी क्रिएशन है। मजेदार बात यह है कि उसे क्रिएट करने के लिए मुझे अपने थॉट्स पर ध्यान देना पड़ेगा, यानी कि जो मैं सोच रहा हूं, जो मैं संकल्प कर रहा हूं, जो मेरे थॉट्स आ रहे हैं। अब थॉट्स आ रहे हैं या मैं उन्हें क्रिएट कर रहा हूं, ये भी एक नई वोकैबुलरी के साथ हम बातचीत का सिलसिला शुरू कर रहे हैं। कुछ और बातें हैं जिनका हम रिकैप करेंगे, लेकिन पहले स्वागत करते हैं, हमारे साथ हैं ब्रह्मा कुमारी सिस्टर शिवानी। ओम शांति।
1: ओम शांति
0: सिस्टर शिवानी। मैं थॉट तक तो ले आई कि जब हमने उस फीलिंग को देखा कि खुशी कहां है, मैंने देखा कि ये सब में ढूंढ रहे थे, ये सब में समझा वो नहीं है, क्योंकि हमने जब अपने आप को चेक किया तो वो खुशी मेरी अपनी क्रिएशन मुझे समझ में आई, और मेरा थॉट मेरी उस फीलिंग को क्रिएट कर सकता है। पॉजिटिव खुश वाला थॉट जो था वो क्रिएट करता है। थोड़ा सा रिकैप लेते हैं, और ये जो इतना पावरफुल चीज है, इतनी शक्तिशाली वस्तु मेरे पास है, अनुभव कहे या कुछ भी कहे, एनर्जी कहे, वो कैसे क्रिएट होता है? कौन सी ऐसी बातें हैं जो थॉट्स क्रिएट करते हैं?
1: हमने जैसे देखा कि परिस्थितियां आती हैं, लोग ऊपर नीचे कई बार हमारे साथ व्यवहार करते हैं, तो कहीं ना कहीं हमारा जीवन आउट ऑफ कंट्रोल जा रहा था, एंड थिंग्स वर बिकमिंग चैलेंजिंग, अनप्रिडिक्टेबल। यू नो, सडनली समबडी बिहेव्स इन अ वेरी अनप्रिडिक्टेबल वे एंड आई डोंट नो हाउ टू रिस्पॉन्ड। तो कभी ना कभी ये एक थॉट चलना शुरू हुआ कि आखिर इस तरह से अगर जीवन चलती जाएगी तो देर इज जस्ट नो वे आई कैन बी हैप्पी। तो फिर हमने जो हैप्पीनेस के ऑपोजिट वाली फीलिंग्स हैं, सॉरी, चाहे वो एंग्जाइटी है, वरी है, उनको स्वीकार करना शुरू कर दिया, क्योंकि यस, सिचुएशंस आर चैलेंजिंग, तो सिचुएशन पर थॉट डिपेंडेंट है, तो यस, हमेशा खुश रहना इज गोइंग टू बी वेरी वेरी चैलेंजिंग, क्योंकि हमेशा सिचुएशन फेवरेबल नहीं होने वाली है। हमेशा रिश्तों में हर चीज मेरे अनुसार चले, ये नहीं होने वाला है। लोग मेरी एक्सपेक्टेशन को हमेशा मीट करें, ये नहीं होने वाला है। आप जैसा मैं सोचू वैसा बिहेव करें, ये नहीं होने वाला। सो इफ माई हैप्पीनेस इज बेस्ड ऑन योर बिहेवियर, इट्स अ बिग क्वेश्चन मार्क। देन वी रियलाइज के सिचुएशन तो बाहर से आते, थॉट हम करते, और अगर हम अपने आप को देखना शुरू करें और अपने आप को चेंज करना शुरू करें, हो सकता है हम उसी परिस्थिति में थोड़ा सा अपने आप को बेटर फील कर सकते। पहली बात तो हैप्पीनेस क्या है, यू नो, दैट ऑल्सो इज अ क्वेश्चन मार्क। वी रियली डोंट नो वॉट वी आर टॉकिंग अबाउट। क्या हम एक्साइटमेंट की बात कर रहे हैं, क्या हम यू नो बहुत ज्यादा कुछ उमंग उत्साह उस तरह की बात कर रहे हैं? हैप्पीनेस डजेंट मीन ऑलवेज दैट यू आर जम्पिंग अप एंड डाउन, लाइक दैट्स नॉट हैप्पीनेस। कहीं कुछ बात हो गई है, घर में कोई हादसा हो गया है, किसी कोई इलनेस है, somebody has left the body, तो देर इज नॉट क्वेश्चन। आप बोलोगे इस टाइम हाउ कैन आई बी हैप्पी? Yes, this time I cannot be happy, but can I be stable? That's very important. Or is it that pain and sorrow, ye natural hi hai, ye create karna hai? Kyunki jitna hum stable reh sakenge, utna hum us situation ko achhi tarah se cross kar sakenge. Aur stable rehne ke liye, mujhe us situation mein right kind of thought create karna padega. To humne dekha, jo thought hum create karenge, us quality ki fir hume फीलिंग्स जेनरेट होंगी, वो फिर हमारा एटीट्यूड डेवलप होगा, फिर हमारी पर्सनालिटी बनती जाएगी, एंड देन माय डेस्टिनी। और थॉट्स पर इन्फ्लुएंस किसका होता, क्योंकि आज ये समझ में तो आ गया कि थॉट्स सब कुछ काम कर रहा है बहुत बड़ा, लेकिन थॉट्स को चेंज कैसे करूं? ये तो आदत ही पड़ गई है मुझे नेगेटिव सोचने की। तब वी सॉ लास्ट टाइम कि थॉट्स पर जो चीजों का इफेक्ट होता, वन इज इन्फॉर्मेशन, वन इज पास्ट एक्सपीरियंसेस, एंड थर्ड इज बिलीफ सिस्टम। हमारी जीवन में हम किन मान्यताओं के साथ, बिलीफ्स के साथ अपना जीवन

0: be environment, it could be jo hame sikhaya gaya, you know, bachpan se. Let's say ke as a child, ke as a child maine ye dekha ke jab bhi mujhse kuch galti hui to mujhe daanta gaya, hai na, ya jab bhi maine kuch aisa kar diya jo mere parents ke anusar right nahi tha to mujhe daanta gaya. Ab ye information jaise jaise maine dekhi ke this is the way, to mera kya belief system bana ki jab bhi koi kuch aisa kare
1: jo aapko pasand na ho,
0: aapko right na lage, to usko change karne ka tarika usko daanto. To ye maine sikha na. It's not that kisi ne mujhe sikhaya baithkar, lekin maine wo scenario se, maine sabko apne aaspaas wo karte hue, maine wo belief system banaya. This is the way it works. To ye hum belief systems banate gaye. Ab iska matlab ye bhi nahi hai ki hum auron par blame kar de ki jo bhi belief system ke liye. Hame fir apne jeevan mein aaj stop karke check karke dekhna padega ki wo belief system kya result create karta hai. You know, har ek belief, you know, it's like a computer. Agar computer bahut powerful ek system hai jo hamare paas hai, to ek computer ko chalane wala jo sabse powerful cheez hoti hai, wo hoti hai operating system. Us computer ka operating system, kisi ke paas windows hai to kisi ke paas mac hai to kuch bhi, to wo operating system bahut zyada determine karta hai ki sare programs jo us par chalenge
1: wo kaise chalenge.
0: To ye jo hamara belief system hai na,
1: this
0: is like the operating system. तो ये इसको टाइम टू टाइम थोड़ा सा,
1: इसको तो बहुत सारी चीज, अब जैसे यही एक बिलीफ सिस्टम भी हो सकता है कि दर्द के साथ रहना तो नेचुरल है.
0: एक्चुअली ये एक नेचुरल है, आज टेंशन होना तो नेचुरल है, हमेशा खुश कैसे रह सकते हैं,
1: कभी खुशी कभी गम,
0: ये भी तो एक बिलीव सिस्टम है. विच इज ओके, नो वन इज टू चैलेंज माई बिलीव सिस्टम, आई हैव टू चैलेंज इट माई सेल्फ. मुझे खुद अपने आप को देखना पड़ेगा, क्योंकि बिलीफ है एक मान्यता है,
1: लेकिन बिलीफ जो है वो एक्सपीरियंस भी तो बन रहा होगा ना.
0: यस,
1: तो मेरा एक्सपीरियंस ये कह रहा है, मेरा अनुभव ये कह रहा है, और उसको मैंने बिलीव, जैसे बचपन में भी मैं देखती आई जो, तो कहीं ना कहीं मेरे अनुभव होते गए, अनुभवों को मैंने अपना बिलीफ सिस्टम बनाया.
0: तो अब सपोज मैंने बचपन में ये सीखा कि जब भी कोई गलती करे तो उसको गुस्सा करो, ठीक है, तो मैंने भी ये पकड़ लिया. या मैंने ये सीखा कि जब मेरे पेरेंट्स मुझे गुस्सा करते हैं ना तो मैं पढ़ने बैठ जाती हूँ, जब नहीं गुस्सा करते ना
1: तो
0: मैं नहीं पढ़ती, तो मेरा अपना मस्ती चलती रहती है, लेकिन जैसे ही उन्होंने मुझे डांटा तो मैंने पढ़ा. तो मेरा क्या बिलीफ सिस्टम बना कि किसी से अगर काम करवाना है तो काम करवाने का तरीका क्या है, उनको डांट तो ना वो काम कर देते हैं. नाउ आई टुक दिस बिलीफ सिस्टम एंड आई स्टार्टेड वर्किंग विद इट इन माई लाइफ. तो चाहे वो मेरे ऑफिस में है, चाहे वो मेरे घर पर है, आई एम वर्किंग विद दिस बिलीफ सिस्टम कि किसी से काम करवाना है उनको डांट दो. काम भी हो रहा है, लेकिन क्या मेरी पर्सनल क्वालिटी ऑफ लाइफ पर उसका इफेक्ट होता है? क्या मेरे रिश्तों के ऊपर उसका इफेक्ट होता है? एक तरफ से आई एम सेइंग मुझे हैप्पीनेस चाहिए, हर एक कह रहा है मुझे खुशी चाहिए, दूसरी तरफ से मैंने बिलीव सिस्टम बनाया कि गुस्से से काम होता है. हैप्पीनेस एंड एंगर, ये दोनों इकट्ठे कैसे रहेंगे? हाउ विल इट हैपन? आज मुझे रोज काम करना है, रोज लोगों से काम करवाना है, एंड रोज मैं इसी बिलीव सिस्टम से काम कर रही हूँ कि गुस्से से काम होता है, गुस्से से काम. तो एनर्जी क्रिएट हो रही है अंदर गुस्से वाली, दिस एनर्जी गोज आउट एंड देन द सेम एनर्जी कम्स बैक. तो इतना गुस्सा क्रिएट कर कर कर के सारा दिन, देन व्हाई एम आई सेइंग कि मुझे हैप्पीनेस चाहिए?
1: काम तो होता गया ना, तो मैं तभी उसको यूज करूंगी ना जब काम नहीं हो रहा होगा.
0: राइट, तो आप काम करवाने के लिए उसको यूज कर रहे हो ना, लेकिन हमने कभी स्टॉप करके लाइफ में ये चेक करना पड़ेगा मुझे क्या चाहिए जीवन में. ठीक है, सपोज हमने कहा कि ये ऑपरेटिंग सिस्टम है, ठीक है, ये मेरा ऑपरेटिंग सिस्टम है कि गुस्से से काम होगा, ये मेरा ऑपरेटिंग सिस्टम है, लेकिन मैं चाहती हूँ कि वंस आई वर्क विद दिस प्रोग्राम ऑन द कंप्यूटर मुझे रिजल्ट कुछ और चाहिए. अब रिजल्ट तो वो वाला नहीं आ रहा ना, रिजल्ट खुशी नहीं आ रही, गुस्सा बार बार करने के बाद खुशी रिजल्ट नहीं हो सकती. तो अगर वो रिजल्ट वो नहीं आ रहा जो मुझे चाहिए, तो कहीं ना कहीं मुझे ऑपरेटिंग सिस्टम को चेक करना पड़ेगा, क्योंकि मैं नहीं तो कॉन्ट्रडिक्शन में अपने जीवन को जीती हूं कि इंस्ट्रक्शन कुछ और फीड करती जा रही हूं और रिजल्ट कुछ और एक्सपेक्ट करती जा रही हूं. करूं गुस्सा, करूं चिंता और चाहिए खुशी, तो कहां से होगी? नाउ अब गुस्से से काम भी क्यों करवा रहे हैं? चाहिए तो खुशी, लेकिन दूसरा बिलीफ सिस्टम ये बना हुआ है कि काम जितना होता जाएगा
1: खुशी,
0: सफलता मिलती जाएगी, जितनी सफलता मिलेगी उतनी खुशी मिलेगी. नीड टू स्टॉप एंड चेक, दीज आर बिलीफ सिस्टम.
1: तो ये तो पूरी जिंदगी मेरे बिलीफ सिस्टम पे जुड़ी
0: है, सब कुछ तो बिलीफ सिस्टम पे है. हर, दैट्स व्हाई वी सेड इट्स द ऑपरेटिंग सिस्टम.

0: क्वालिटी का ऑपरेटिंग सिस्टम है, सब कुछ उस पर बेस्ड है, सारा कुछ उस पर बेस्ड होगा। सारा दिन में हमें पता भी नहीं चलता हम कितने सारे बिलीफ सिस्टम्स के साथ काम करते हैं।
1: तो अभी हमें पूरा विंडोज खोलना पड़ेगा, इट्स अ बिग प्रोसेस एक्चुअली।
0: बट द थिंग इज के बिलीफ सिस्टम एंड वन इज द ट्रूथ, इज दिस द ट्रूथ, एंगर इज नेचुरल, ये एक बिलीफ है या ये एक सत्यता है, ये मुझे अपने आप के साथ एक्सपेरिमेंट करना पड़ेगा। ये जो बिलीफ सिस्टम्स, अगर हम एक भी रॉन्ग बिलीफ सिस्टम के साथ चले, सी द क्रिटिकल पार्ट क्या है, बिलीफ से थॉट क्रिएट होगा, थॉट से डेस्टिनी क्रिएट हो रही है। अगर मेरा एक भी बिलीफ सिस्टम थोड़ा सा ऊपर नीचे है, उसका डायरेक्ट इफेक्ट किस पर आएगा,
1: मेरी डेस्टिनी पर,
0: डेस्टिनी पर आएगा। एंड दैट्स वाई स्टॉपिंग एंड चेकिंग माय बिलीफ सिस्टम सारा दिन में, अगर आपके साथ कुछ भी बाहर आप जो एनर्जी डाल रहे हैं, आपके साथ जो हो रहा है, कहीं आपको अंदर डिस्टर्बेंस फील हो रही है, जस्ट हैव टू स्टॉप एंड चेक मेरा कौन सा बिलीफ सिस्टम इसमें काम कर रहा है। एंड आपको अपना बिलीफ सिस्टम उसी टाइम दिखाई दे देगा इमीडिएटली। आपको सिर्फ वो इक्वेशन बनाकर रखनी है अपने लाइफ में, बिलीफ इज इक्वल टू थॉट इज इक्वल टू डेस्टिनी, बीच का भी बहुत ज्यादा नहीं छोड़ो उसको, दैट तो वो ऑटोमेटिकली इट्स वर्किंग। जैसे ही आपके अंदर कोई थॉट क्रिएट हुई, लेट्स से फॉर एग्जांपल हम दोनों बैठे हैं, अभी चार लोग आते हैं सामने, एंड वो चार लोग मेरे से नहीं बात करते, वो चार लोग ज्यादा आपके साथ ही बात करने लग जाते हैं, यू नो दे प्रेजिंग यू एंड दे अप्रिशिएटिंग यू एंड आई एम नॉट फीलिंग नाइस, मुझे अच्छा नहीं लग रहा, ठीक है ना। मुझे अगर फीलिंग के लेवल पर दिखाई देता, देन आई विल गो बैकवर्ड्स, आई विल से मुझे अच्छा नहीं लग रहा, कौन सी वाली थॉट क्रिएट हो रही है इसके पीछे, क्या थॉट क्रिएट हो रही है, तो थॉट ये क्रिएट हो रही है, इज शी बेटर देन मी, इज इट दैट पीपल लाइक हर मोर, दिस काइंड ऑफ थॉट्स आई एम क्रिएटिंग, और ये थॉट इज मेकिंग मी फील लो। अब इसके पीछे मुझे बिलीफ सिस्टम अपना चेक करना पड़ेगा, कौन से बिलीफ की वजह से मैंने ये थॉट क्रिएट की। मेरा बिलीफ वो था कि जितना लोग मुझे अप्रिशिएट करेंगे उतना आई एम अ बेटर पर्सन।
1: ओ गॉड,
0: माई बींग गुड, वर्दी, नाइस, वट एवर लेबल हमें लेना है,
1: आई थिंक यू सॉल्व सच अ बिग प्रॉब्लम।
0: इट इज बेस्ड ऑन लोगों का अप्रिसिएशन, क्योंकि मैं अपने आप को नहीं इवैल्यूएट कर सकती। तो वो बिलीफ सिस्टम ने क्या किया, तुरंत जैसे ही मैंने वो चार लोगों को आपको अप्रिशिएट करते हुए देखा, मैंने, क्योंकि वो ऑपरेटिंग सिस्टम वर्क कर रहा है, तो इमीडिएटली द थॉट इज देन आई एम नॉट अ गुड पर्सन, शी इज अ बेटर पर्सन, आई एम नॉट अ नाइस पर्सन, पीपल डोंट लाइक मी, और उसके बाद फीलिंग कौन सी क्रिएट होगी,
1: और उसके साथ साथ और इसके साथ जुड़ी हुई और बाकी और गंदी गंदी फीलिंग्स भी आ सकती है, यू नो, ये एक्चुअली जेलेसी स्टार्ट्स फ्रॉम हियर।
0: यस, सो जेलेसी किस बेसिस पर स्टार्ट हुई,
1: तो इट हैज नथिंग टू डू विद मी एंड यू,
0: इट हैज नथिंग,
1: इट हैज एक्चुअली टू डू विद अ बिलीफ सिस्टम विच एक्चुअली अगर मेरे सामने आए तो मुझे कहेगा कि लोगों से क्या फर्क पड़ता है,
0: एब्सोल्युटली,
1: लेकिन वो बिलीफ सिस्टम कहीं ना कहीं मैंने फिट किया।
0: हाँ, तो अभी क्या हुआ, हमने क्या किया, अगर हम उसको बिलीफ सिस्टम के लेवल पर चेक कर लेंगे कि कौन सा बिलीफ मेरा वर्क हुआ, क्योंकि यहां पर यही बिलीफ वर्क हुआ कि जितना लोग जिसको अप्रिशिएट करते वो ज्यादा अच्छा है। हाँ। एंड जहां ये लोग मेरे पास बात करने नहीं आए, मतलब आई एम नॉट गुड, नाउ दिस बिलीफ सिस्टम कैन बी वेरी वेरी वेरी वेरी डिस्टर्बिंग फॉर मी, और ये डिस्टर्बेंस के कारण मैं जेलस फील करूंगी, फिर मैं अपने आप को अच्छा प्रूफ करने के लिए लोगों के सामने मैं आपको क्रिटिसाइज करूंगी, इट्स नथिंग टू डू विद यू एक्चुअली, आप बहुत जैसे हैं वैसे ही हैं, लेकिन मुझे अपने आप को फील करवाना ना। अब इससे रिस्क ये होगा कि भले आपके सामने नहीं, लेकिन अपने आप को अच्छा फील करने के लिए मैं आपकी बुराइयां देखना शुरू कर दूंगी कि क्या है इसमें, क्या अच्छा लगता है, इनको क्या पता ये एक्चुअली कैसी है, इनको कुछ मालूम, यू नो, एंड माय इंटेलेक्ट, माय माइंड विल स्टार्ट गोइंग एंड लुकिंग एट,
1: एंड यू नो हियर द डेस्टिनी इज क्रिएटेड बिकॉज आपकी और मेरी लड़ाई हो जाएगी, यू नो, आप दूर होते जाते हैं ऐसे ही।
0: अब जब मैं ये एनर्जी क्रिएट करूंगी तब एक्चुअली लोग मेरे से परे हटेंगे, एक्चुअली हटेंगे, क्योंकि मैंने कौन सी एनर्जी अब क्रिएट करनी शुरू कर दी, नेगेटिविटी की, जेलेसी की। फिर हो सकता है जब मुझे चांस मिले मैं उन्हीं चार लोगों के पास जाकर इनडायरेक्टली थोड़ी सी आपके बारे में बुराई करना शुरू कर दूं, क्योंकि मैं उनको कैसे बोलूं कि मैं बहुत अच्छी हूं, तो मैं उनको बोल दूंगी आपको क्या पता है कानुप्रिया के बारे में, इनडायरेक्टली, ताकि नेक्स्ट टाइम दे विल कम टू मी बिकॉज एंड नाउ आई एम एक्चुअली टेकिंग देम अवे फ्रॉम मी ओनली बिकॉज ऑफ दिस वन बिलीफ सिस्टम। अब अगर उसी सीन में मैं अपना बिलीफ सिस्टम चेंज करूं, आई एम हु आई एम, आई नो हु आई एम, आई एम नॉट परफेक्ट,

0: आई नो दैट वेरी वेल कि मेरे अंदर अपनी कमजोरियां हैं, अपनी शक्तियां हैं, लेकिन उन पर मुझे ही काम करना है, मुझे अपने ऊपर वर्क करना है. लोग मेरे बारे में क्या सोचते हैं या किस बेसिस पर मेरे पास आते हैं, दैट डजेंट मैटर. ये जर्नी मेरी अपनी है. तो मेरा आपके साथ जो कंपैरिजन करने की यात्रा होगी, दैट विल स्टॉप. हु आई एम इज बेस्ड ऑन हाउ आई नो माई सेल्फ, नॉट बेस्ड ऑन हाउ पीपल appreciate me or say to me. Yes, ये natural है कि अगर आप एक अच्छी energy create करते हैं तो लोग आपके पास आते हैं, लेकिन वो benchmark नहीं है. लोगों का आपके पास आना, लोगों का आपके साथ अच्छी तरह से बात करना, इसके पीछे बहुत सारे factors हो सकते हैं. It is definitely not necessary. आज के समय में we can see it. It is possible कि I don't like you और फिर भी मैं आपके पास आऊँ, आपके बारे में बहुत अच्छा बोलूँ. एंड अगर आप उस बेसिस पर अपने आप को इवेल्युएट करेंगे तो वो तो बहुत रिस्की है. मुझे अपने आप को खुद इवेल्युएट करना आना चाहिए. बट फॉर दैट आई विल हैव टू चेंज माई बिलीफ सिस्टम कि मैं कौन हूँ, क्या हूँ, ये सिर्फ मुझे पता है और मुझे अपने उस पर काम करना है, अपनी कमजोरियों पर. लोग क्या कह रहे हैं ये बहुत ज्यादा मैटर नहीं करता, क्योंकि लोग अपने दृष्टिकोण से बोल रहे हैं. हाँ, लोग जो कहते हैं आई कैन टेक दैट एज अ फीडबैक, बट जस्ट टेक इट एज अ फीडबैक एंड वर्क विद माइसेल्फ. तो एक एक बिलीफ सिस्टम मेरे थॉट पर एंड फिर मेरी डेस्टिनी पर काम करता है. और फिर हम कहते हैं नहीं नहीं, इसमें मेरा क्या है, ये तो इनकी वजह से हुआ. इट इज टोटली
1: यू नो. एंड व्हाट हैपेंस, एंड सडनली आई रियलाइज दैट दिस इज वेयर द फ्रेंडशिप स्टार्ट्स यू नो सोरिंग अप.
0: तो डेस्टिनी फॉर बिल्कुल. एंड इट्स नॉट ओनली अबाउट फ्रेंडशिप. मैं कितने दर्द से गुजरने वाली हूँ, मेरे अंदर जो इन्फीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स हमारे अंदर आ जाता है. क्यों आ जाता है? हम अपने आप को किसी के साथ कंपेयर करते हैं. ये भी तो एक बिलीफ सिस्टम है, कॉम्पिटिशन,
1: कि अगर मैं मुझे अच्छा होने के लिए या मुझे जीतने के लिए किसी को तो हारना ही है. जिंदगी एक हार जीत है.
0: जिंदगी एक हार जीत है, बताओ. ये बिलीफ सिस्टम हमारा बना है.
1: जिंदगी इज, लाइफ इज अ वॉर,
0: लाइफ इज अ गेम.
1: यस,
0: लाइफ अगर गेम बोलेंगे, लाइफ इज अ गेम, तो इट ऑलवेज बी के देर विल बी अ विनर एंड देर विल ऑलवेज बी अ लूजर. अब अगर मैं इस बिलीफ सिस्टम के साथ चलूं कि इट्स अ कॉम्पिटिशन, इट्स अ गेम, इट्स अ वॉर, तो मैं सारा दिन क्या करूंगी औरों के साथ?
1: खेलती रहूंगी.
0: यस. एंड सारा
1: गेम खेलने में मैं जीत हार को देखती रहूंगी, कौन जीता कौन हारा.
0: एब्सोल्युटली. और जैसे ही अगर मुझे कहीं दिखाई दिया कि आप जीत रहे हैं, तो मैंने कुछ भी कर देना है आपसे आगे निकलने के लिए, चाहे वो ऑफिस में इंटरनल पॉलिटिक्स है, चाहे आपको क्रिटिसाइज करके आपको नीचे गिराना है. मतलब आई कैन डू एनीथिंग, क्योंकि लाइफ इज अबाउट मी गोइंग अहेड ऑफ यू. दिस इज अ बिलीफ सिस्टम. तो एक बिलीफ सिस्टम मेरे पूरे अंदर की सोच को, मेरी फीलिंग को सारा चेंज कर सकता है. एक बार तो रुक कर देखें, वेयर इज द कॉम्पिटिशन.
1: कि मेरा जो ये थॉट क्रिएट हुआ है वो किस बिलीफ सिस्टम पे है?
0: स्टॉप करके देखना पड़ेगा. हाँ. क्या इसके पीछे मेरे अंदर, दिस हैपन्स स्लोली, ऑब्वियसली वो एकदम से पहले दिन पर नहीं होगा, लेकिन कई बार जब भी आपके बिलीफ आपको ध्यान में आए, यू शुड ऑलवेज राइट इट डाउन, क्योंकि इतने सारे बिलीफ हमारे हैं कि सपोज मैंने आपके लिए कुछ किया तो आपको अप्रिशिएट तो करना ही चाहिए मुझे. ये मेरा बिलीफ सिस्टम है. अगर आपने नहीं अप्रिशिएट किया तो मुझे बुरा. क्यों? क्योंकि मेरा बिलीफ सिस्टम क्या है, जब मैंने किसी के लिए कुछ किया तो अप्रिसिएशन तो मिलनी ही चाहिए. प्रेज तो मिलना ही, इट्स सो नेचुरल.
1: इट इज नेचुरल. मतलब अगर मैं आपको कुछ दे रहा हूँ, कुछ कर रहा हूँ, तो यू शुड एटलीस्ट अप्रिशिएट. एटलीस्ट अप्रिशिएट.
0: सी नाउ, जैसे जैसे हम अवेयर होते जाते हैं, हमें इमीजिएटली पता चल जाता है. नहीं, मैंने किया क्योंकि मैं करना चाहती थी. या बिलीफ सिस्टम, अगर मैंने आपके लिए अच्छा किया तो आप भी तो रिटर्न में अच्छा ही करोगे. बिलीफ सिस्टम है
1: तो जरूरी नहीं कि वो अच्छा करेगा.
0: क्या जरूरी है आज के वो अच्छा करेगा?
1: हाँ, वो किस थॉट प्रोसेस में?
0: अच्छा और बुरा तो मेरे रेफरेंस पॉइंट से है ना. अच्छा और बुरा आपके रेफरेंस पॉइंट से तो है ही नहीं. आप अपने अनुसार तो हमेशा अच्छा ही कर रहे हो वैसे भी, लेकिन मेरा बेंचमार्क वो
1: ये बना रखा मैंने. ओ यस, मैं आपसे इतना प्यार करती हूँ, आपने मैं आपके लिए फ्लावर्स लेकर आती हूँ, मैं आप जब बीमार हो जाते हो मैं आपकी इतनी केयर करती हूँ, मैं बीमार हो गई पूछा तक नहीं आप
0: ना से. फिर थॉट कौन सी क्रिएट हुई, फीलिंग कौन सी क्रिएट हुई,
1: गुस्से
0: अगली बार मैं नहीं करूंगी आपके लिए. डेस्टिनी. दिस इज हाउ इट इज चेंजिंग. नेक्स्ट वी चेंज आवर बिलीफ सिस्टम एंड वी से मैं वो करूंगी जो करते हुए मुझे अच्छा लगता है. नॉट मैं वो करूंगी ताकि इन रिटर्न आप करेंगे, क्योंकि उस बिलीफ सिस्टम से मुझे क्या हुआ, रिजल्ट क्या मिला?
1: हर पेन. यस, रिजेक्शन, पेन, अननेसेसरीली, यू नो. एंड देन वी स्टार्ट प्रेशराइजिंग द अदर पर्सन ऑल्सो.
0: एब्सोल्युटली.

0: आज एक बहुत मेजर हमें अगेन हम कहेंगे एक चाबी है, एक कुंजी है, एक की है टू एक्चुअली सॉल्व द यू नो इट्स की टू हैप्पीनेस बेसिकली. सो लेट्स रिफ्लेक्ट फॉर सम टाइम एंड सी हाउ इट वर्क्स विद अस.
1: कंफर्टेबल होकर बैठे. वी नॉट डूइंग एनीथिंग अननेचुरल. अपने आप को ही देखने की कोशिश करते हैं. बहुत सारी मान्यताओं के आधार पर जीवन चलता आ रहा है, लेकिन जैसे जैसे हम जीवन में अपने अनुभवों को देखते, अगर वो अनुभव, वो फीलिंग्स कंफर्टेबल नहीं लगती, तो अपनी मान्यताओं को चेक करो. वो बिलीफ्स जो हम समझते थे कि यही सत्य है, लेकिन ट्रूथ इज ऑलवेज कंफर्टेबल. ट्रूथ विल ऑलवेज मेक मी फील पीसफुल. समवेयर देयर इज अ कंफ्यूजन. हैप्पीनेस इज नेचुरल. हैप्पीनेस इज अनकंडीशनल. हैप्पीनेस इज माय क्रिएशन. मेरी खुशी मेरी अपनी रचना है. ये किसी पर भी आधारित नहीं है. ये मेरे हाथ में है. आज इस बिलीफ को लेते और सारा दिन की यात्रा पर चलते हैं और चेक करते क्या अनुभव होता है. ओम शांति.
0: ओम शांति. जिस तरह से साइलेंस में बैठकर हमने अपने सबकॉन्शियस को, आपने पहले भी कहा था कुछ कुछ बीज बोने की जरूरत है, तो आज साइलेंस में बैठकर अपने साथ इस एक बिलीफ सिस्टम को डालने की कोशिश की है और ये प्रयास संभव रहेगा कि हैप्पीनेस मेरी अपनी क्रिएशन है, मेरी अपनी वैल्यू है एंड आई कैन बी हैप्पी एनी टाइम आई वॉन्ट. इसी के साथ हम आपसे भी विदा लेते हैं, लेकिन इसी उम्मीद के साथ कि इस श्रृंखला में जो जो हम सीख रहे हैं उसे हम अपने जीवन में इम्प्लीमेंट करते जाएंगे. ओम शांति.

0: स्वयं को सशक्त बनाने के लिए सुनिए शिवानी बहन के श्रेष्ठ विचार।
1: कुछ दिन पहले एक भाई मिले, उन्होंने कहा सुबह क्या हुआ, कहते मैं उठा, ऐसे बेड से उठा तो टेबल थी बेड के सामने, मेरा पैर लग गया टेबल से। तो मैंने सबको जोर जोर से डांट लगानी शुरू कर दी, दिखता नहीं, अपने सब स्टाफ को बुलाया, वाइफ को बुलाया, दिखता नहीं बेड के सामने टेबल रखी, उठा मेरा पैर लग गया, सबको डांट रहा था। तो धीरे से किसी ने आके कान में कहा, सर रात को आपने रखी थी। अब जैसे ये पता चला कि रात को आपने रखी थी, अब व्यवहार कैसा हो जाएगा? इसीलिए जीवन में जितने विघ्न हमें दिखाई दे रहे हैं, जिनके लिए हम औरों को डांट रहे हैं, औरों को जिम्मेवार ठहरा रहे हैं, औरों पर चिल्ला रहे हैं, वो जीवन में विघ्न हमारे किसने रखे थे? किसने रखे थे? वो हमने ही रखे थे। अब औरों पर डांटने की बजाय हमें क्या करना है? हमें क्या करना है कि आज उसको ध्यान से साइड पे रखना है। तो जो मेरे जीवन में हो रहा है, अगर मुझे ये क्लैरिटी है कि जैसा कर्म वैसा कॉन्सिक्वेंस, तो मुझे उंगली फिर किसी और पर नहीं, उंगली यहां, और ठीक करने की उंगली भी

0: यहाँ वी आर नॉट डूइंग अ फेवर टू एनीबडी एल्स। ये हम कहते हैं ना, उसने किया ही इतना, मैं कैसे क्षमा करूं, उनको नहीं क्षमा कर रहे, अपने आप को क्षमा कर रहे हैं।
1: आप सुन रहे हैं पुणेरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो।

और नहीं बस

जवानी है तड़प रही है ये जवानी जवानी आजा रानी ओ रानी रानी रानी तू है हुस्न की सरकार मैं हूँ इश्क का सरदार तू है बुलबुल मैं बहार मैं हूँ दुनिया की चार।

0: हरि ओम हरि ओम हरि हरि ओम
1: दर्शन भिक्षा दे दो
0: हरि ओम
1: मोह दर्शन भिक्षा दे दो आगे दो
0: हरि मनोहर मोहन के दर हरि ओम हरि मनोहर मोहन के दर हरि ओम मनोहर मोहन के दर हरि ओम मनोहर मोहन के दर

हाट मेरा तुम हो, स्वीट हार्ट मेरा तुम हो, ये मैं हूँ तुम्हारे दम से। You tell me something and I tell you something, खफा न रहो जी हमसे। दिल को लगाया ये तुम ही ने सिखाया, I thank you very very much, very very much, very very much, much much much, सच सच सच, oh dear, सच सच, I love you very

गुलाब है दोनों खिलके, काहे को है बनी तू आजा मेरी हनी, लुटा दू चमन दिल के। गली उल्फती ये गुल उल्फता, आई थैंक यू वेरी वेरी मच, वेरी वेरी मच, वेरी वेरी मच मच मच। सच सच सच मोटियर, सच सच आई लव यू वेरी मच, वेरी मच, वेरी मच।

अब तो सतियों के पास ले हैं। यकीन होगा किसे कि हम तुम इक राह

यूं शुरू हुआ है ये फसाना हाय हाय, तेरा यूं नजर चुरा के जाना हाय हाय, यूं शुरू हुआ है ये फसाना हाय हाय।

रूठ के कहाँ चली ओ मेरी चंपा कली, पलट ए पलट ए पलट तेरा ध्यान किधर भाई। रूठ के कहाँ चली ओ मेरी चंपा कली, कब तलक फिरूंगा मैं इस तरह गली गली, तेरे बिना मेरे दिल की दिल में रही जाए। हाय हाय यूँ शुरू हुआ है ये फसाना, हाय हाय तेरा यूँ नजर चुरा के जाना, हाय हाय यूँ शुरू हुआ है।

ए तुसी ग्रेटो जी, दिल चुरा के चल दिए, वाह क्या कमाल है, चोर जैसी हरकतें, मोर जैसी ताल है, माल भी चुराए और आंख भी दिखाए। यूँ शुरू हुआ है ये फसाना, हाय हाय, तेरा यूँ नजर चुरा के जाना, हाय हाय, यूँ शुरू हुआ है ये फसाना, हाय हाय।

है तो जाइए, हाथ न मलिए जनाब, होंठ न चबाइए, बेकदर हो प्यार क्या है तुम न समझ पाए। हाय हाय हाय, यूं शुरू हुआ है ये फसाना।

0: सुना दे। ये जो फूलों की बेलें नजर आती हैं ना, दरअसल ये बेलें नहीं है, अरबी में आयतें लिखी हैं। इसे दिन के वक्त देखना चाहिए, बिल्कुल साफ नजर आती है। दिन के वक्त ये सारा पानी से भरा रहता है। दिन के वक्त जब ये फुहारे
1: कहाँ आ पाऊंगी मैं दिन में?
0: ये जो चांद है ना, इसे रात में देखना, ये दिन में नहीं निकलता।
1: ये तो रोज निकलता होगा।
0: हाँ, लेकिन बीच में अमावस आ जाती है। वैसे तो अमावस 15 दिन की होती है, लेकिन इस बार बहुत लंबी थी।
1: 9 बरस लंबी थी ना।

0: जाती हो?
1: कुछ अति आजादी है?
0: नहीं नहीं, सुनो तो, सुनो तो, सुनो तो। आप यहाँ आए इसलिए, आपने बुलाया इसलिए, आए हैं तो काम भी बताइए, पहले जरा आप मुस्कुराइए, पहले जरा आप

0: बताइए।
1: पहले जरा आप मुस्कुराइए।
0: आप यहाँ आए किस लिए?
1: आपने बुलाया किस लिए?
0: अच्छा आए हैं तो काम भी बताइए।
1: पहले जरा आप मुस्कुराइए।
0: मुस्कुराने की न कोई बात है।

つらい。切ない。

0: सावित्री जी, आपके पतिदेव तो जरूर आए होंगे, उनसे मिलाएंगी नहीं?
1: आइए। ये क्या करती है, क्या मैं गा नहीं सकता?
2: सुनिए, इनसे मिलिए। ये है मिस्टर।
3: इनका परिचय तो सबके सामने हो चुका है, मेरा नाम सागर है और मैं इनका पति हूँ।
0: मैं इनका भक्त हूँ, इनके संगीत का।
3: ये मेरी छोटी बहन प्रेमा है।
4: नमस्ते।
3: मेरा छोटा भाई
1: किशन रघुवीर सिंह। और आपका नाम?
0: वैसे लोग मुझे मनोहर गाइड भी कहते हैं, चैंपियन भी बुलाते हैं, और कुछ के लिए मैं अंडे वाला हूँ।
3: अंडे वाला? अंडे वाला क्यों?
0: बात यह सागर साहब कि बचपन से मुझे उस मुर्गी की तलाश है जो मेरे लिए सोने के अंडे दे। मुर्गी तो नहीं मिली, हाँ अंडे वाले का खिताब जरूर मिल गया।
2: आप लोग बातें कीजिए, मैं जरा चंपा से मिलकर आती हूँ।
3: आप बैठिए ना।
0: माफ कीजिए, मैं आपकी शादी पे नहीं आ सका।
3: हाँ सर, आप होते तो शादी का मजा ही और था।
0: ये बात है, तो एक काम कीजिए साहब, एक शादी और कर लीजिए। आप कुछ खानी रहे?
3: अरे साहब बहुत खाया, और ये फ्रूट क्रीम खासकर बहुत बढ़िया।
0: एक और खाइए।
3: अरे नहीं साहब।
0: अरे खाइए साहब, हमारे हाथों से खा के देखिए, मजा ही कुछ और होगा। एक मुझे दे दो, सागर को बहुत अच्छी लगी है।

जहर। प्रोफेसर साहब की भविष्यवाणी सच नहीं तो सभी

0: अरे सुन अरे सुन सुन सुन सुन सुन हर दिल को साहब का आराम दिए जा जादुआए आराम दिए जा हर दिल को साहब का आराम दिए जादुआए आराम दिए जा
1: पटाख तुम पटाख तुम पटाख तुम पटाख

खुद को अपना गम है, यही हम है होने से जो है दिल पृथ्वी को हम है, खुद को अपना गम है, यही क्या गम है, जब तक तेरे दम में दम है झूम के यूं ही जिए जा, वो दिल है जो सबके सुखों को बांटे, हक के सुनता जाए गमों के घाटे, वो दिल है जो सबके सुखों को बांटे, हक के सुनता जाए गमों के घाटे, सारे झूठे दिल अपना के घूम घूम के यूं ही जिए जा, आंखों के आंसू खास झाग लिए जा, जुल्फों के साए में आराम लिए जा, हर दिल को चाहत का

0: लाइट पंखे चालू देखते ही वो सब पर चिल्लाने लगते थे,
1: अरे रमुआ ये पंखा क्यों खुला छोड़ा, बिजली का बिल क्या तेरा बापू भरेगा।
0: पर आज उन्हें सब प्यारे लाल बुलाते हैं, क्योंकि जब से उन्होंने सोलर पैनल लगवाया है तब से मीटर की सुई भी चैन से सोती है। और हुकुम सिंह भी, पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना आज ही रजिस्टर करें PM सूर्य घर .gov.in पर।

साथ साथ जय जवान हर हर जय जवान।

सवाल तुम्हारा नाम क्या है, तुम्हारा नाम क्या है, तुम्हारा नाम क्या है, तुम्हारा नाम क्या है, महका महका रूप तुम्हारा।

ये वक्त ये जमाना जब ना लगे सुहाना फिर मेरे पास आना, कादिम हूँ मैं पुराना, रखता जो कुछ नजर है

दुश्मन जिसे सताए जिसको लगा के जाए जाके नजर मिलाए धोखा कभी न खाए बूढ़ा हो या हो बच्चा।

0: किस्सा अभी है कल का, तो रोटी थी घर की मलका, सुरमा इधर से झलका, गुस्सा उधर का हल्का। सुनते हो मेरे भाई, फेरो तो एक तलाई, कीमत है तीन पाई, है कोई नजर वाला, है कोई नजर वाला।
1: अच्छा बाबा बुलाती हूँ, काम तो मत खाओ। गोपी, ओ गोपी,
2: क्या हो?

घर को जाते ही चंदान, क्यों पास न आते ही चंदान, जा मार ये बाता चंदान, दिल तोड़ ये घाता चंदान। तो मैं किधर को जाते ही चंदान, क्यों पास न आते ही चंदान।

पाका नारंगी की पाका पाता चूटा रंगी चालान जैसे मस्त शराबी हालत रंग बिरंगी।

है चंदाना, सूरज से अजीब है चंदाना, पर फिर भी नसीब है चंदाना, ये तेरे हरीब है चंदाना। हमें माना गरीब है चंदाना, सूरज से अजीब है।

Allah'ım elim, madat karanlığa. Maytot bir koç var mı?

हृदय किया था गहराइयों में तरंगित उस निराकार निरंजन की भक्ति हमारे जीवन मन और कर्म को देती है नेकियों की शक्ति।

आइए इस विश्व के पालनहार उस निराकार को हम अपनी भावनाओं के स्वर में साकार करें। संगीत सुमन के अभिनंदन से सुकर्मों का आधार धरें।

चौदहवीं रात का चांद कुछ थकी थकी सी आधी अधूरी सांसें, कुछ रास्तों के बेनाम से मोड़, एक शाम की फूली हुई सुर्ख व सुनहरी शफक, ये सब उस शायर का सरमाया है जो बूंद बूंद पिघलती रात अपनी ओक में भरता रहता है। कुछ सुनहरी सी चांद की बूंदें, कुछ सब्ज रात के पत्ते जो हथेलियों में पड़ते हैं और सूख जाते हैं। एड़ियों पे उचक उचक के शायर चांद को छूने की कोशिश कर रहा था कि रात बुझ गई, वक्त खत्म हो गया, और वो जो शायर था ना,

0: बांगड़ुओ शुरू हो जाओ और सुर लगाओ। अरे गधो सुर में रेको, सुर में हटको मत, हटको मत। जब दूल्हे राजा आएंगे तो लोगे तुम बलाए,
1: लोगे तुम बलाए।
0: अरे नालायको हम नहीं तुम,
1: अरे नालायको हम नहीं तुम।
0: तुम लेके बलाए फिर देंगे,
2: फिर देंगे।
0: अरे देंगे दुबाए,
1: देंगे दुबाए।
0: शाबाश, तो बनी रहे जोड़ी क्या।

0: कहा,
1: आप यहाँ से जाने का क्या लोगे।

0: सोचो, कुछ तो समझो, कुछ तो सोचो, कुछ तो समझो, रहने दो बेकार की बातें,
1: बेकार की बातें।
0: हाँ हाँ, सुन लेगा बेदर्द जमाना दिल में।

0: இல்லையா?
1: சொல்லுண்ணா.
0: சொல்லுண்ணா.
1: अपने घर को छोड़ के जाऊं, इतनी मेहनत दान नहीं हूँ।

0: पता है मैं गाना जानती हूँ।
1: जरा तारीफ कर दी थी वरना तुम गाती क्या हो?
2: रोती हो पिया बिन नहीं चैना, रोती हूँ दिन रहना, हाय हाय हाय।
0: मैं ऐसा गाती हूँ?
1: मैं तो ऐसा ही सुनता हूँ।
0: और तुम

तूने ओ सनम जाने मुझे ऐसे देखा तूने कैसे क्यों होने लगी जी में टिक टिक टिक टिक टिक टिक टिक टिक टिक टिक टिक।

0: धर लो मोल किसके लूं अजी छोड़ किसके दूं अजी तुम्ही फैसला धर लो तुम्ही फैसला कर लो वेरी गुड
1: मेरे फूल है चांद सितारे
0: ब्यूटीफुल अच्छा जी
1: मैं लाल बाग के
0: वाह
1: बढ़िया है फूल वाली चुप चुप रे होंगे काले
0: अरे क्या करती हो
1: अरे बच्चा आएंगे पापा
0: अरे क्यों लड़ती हो
1: तेरा भेजा छोड़ दूंगी
0: है